पर हर का नाम जपत नस्तर अणक माया रंग ते कना बजावे हर का नाम जपत अकाव जे मार्गे जात अकेला तै हर नाम संग हो सोहेला ऐसा नाम मन सदा ते आई है नानक गुरम परम गत पाई सूरत नाई कूट लख बाई नाम जपत पार पराई अणक बिघन जय आय संगार हर का नाम तत्काल उदार अणक जोन जन में मर जाम नाम जबत पावे बसराम हउ मैला मल कवन तोवे हर का नाम कोड पाव कोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नान पाई साधग संग जे मार के गण जाए न कोसा हर का नाम हुआ संग तो सा जय पैंडे म अंध गुबार हर का नाम संग उजिया राजा पंथ तेरा कोई ना छान हर का नाम तै नाल पसान जय महा भयान तवत बो काम तय हर के नाम की तुम्हें ऊपर साम जहाँ त्रिखा मन तो जा कर खै तय नानक हर हर अमृत बरख भगत जना की बरतन नाम संत जना के मन बिश्राम हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उतरे जनकूट हर दास करत संत दिन रात हर हर अवगत साध कुमात हर जन की हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत बवेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को त्रिवत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कै परे न पंग हर का नाम जन की वड़ियाई हर कै नाम जन शोभा पाय हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कस नह बेयोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर तन जन को आओ प्रभ दीना हर हर जन कै ओढ़ सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जप हर का भगत प्रगट नहीं सपै हर की भगत मुक्त भव करे नानक जन संग केते तरे पार जाते अर को नाम काम तीन हर हर गुण गाम साब देव तुम हर की कथा नाम सुनत दर्द लुख लथा नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुर्त सब नस है संत का संग बड़ पागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुलक सेवर ना हुई नाने गुरुमुख ना पावे जन को ही सलूक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूज सनाई हर हरि नानक नाम आमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म तर्म किरिया सगल त्याग मन बधेरिया मध्य बिरिया अनक प्रकार किए भोजतन पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटायु में कर राती वर्तनेम करे बो पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपी एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीवे महा उदास तपी सरथी वे अगण मैं होमत प्राण अनक होमत प्राण अनक असव है वर पूम दान न्योले कर्म करे बो आसन जहन मार्ग संज मत साधन निमख निमकार शरीर कटावे तव पियो में मैल न जावे हर के नाम समसर कस नाहि नान गुरमुख नाम जपत गत पा मान कामना तीर्थ दे छुटे गर्व गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन से हर रात मन की मैल न तंते जात सदे को बहु साधना करे मन ते कबू न बिख्या टर जल तो वे बहुते अनीत सुध कहा हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरी पतत बहुमूच बहुत स्याण जम का पहु ब्यापै अणक जतन कर त्रसन्ना त्रापै भीख अनेक अगण नहीं बूजै कूड़ भाव दरगा नहीं सिजै सूरस नाई उपयाल मोह ब्यापे माया जाल अवर करतू सगली जम डान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मन हर का नाम जब दुख जाए नान बोले सहज उपाय चार पदार्थ जे को मांगे साथ जना की सेवा लग जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरे साथ संगे उमे सोरे जे को जन्म मरण ते डरे साथ जना की सरने परे जे जन को प्रभु दर्श पिया सा नानक ताके बल बल जासा
सागल पुरख में पुरख प्रदान सासंग जाका मिटे अभिमान आप कहो जो जाने नीचा सब गणे सब ते ऊंचा जाका मन हुई सगल किरीना हर हर नाम तेन कड़ कड़ चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टि ता नानक पा पुन्य ले पा नर्तन कहो तन तेरु नाओ ने तावे कहो नाओ तेरा थाओ ने माने को प्रभ तेरु मान सगल कटाको देवा दान करुण करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गात में ते जानो आपे अपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्त तुम ते हो नानक अवर न जान सकूई सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सह संग दुर्मत माले रे सगल उद्यम मैं उद्यम भला हर का नाम जपो हो जी सदा सगल बाणी मैं अमृत बाणी हर को जा सुन सरसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे कट वसे हर नाम सलोक निर्गुण यार आने सुप्रभ सदा सुमाल जिन किया ते सची तरख नानक निबही नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पराणी कमण मूल ते कमण दृष्टानी जिन तू सास वार सिगारे अगर बगन मैं जने अबारे बार बेस्ता तुझे प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरध पया उपर साग सैन मुख प्याओ बैठ कौ दैन ए निर्गुण गुण कसु न बूझै बख्श लो तव नानक सीजै जय प्रसाद तारे ऊपर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संगसै जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जय प्रसाद पुगे सब रसा सगल सुमगरी संगसाथ बसा दीने अस्त पाव करने तरसना तिसे त्याग अव संग रचना ऐसे दुख मूड अंध ब्यापे नानक काढ लियो प्रभ आपे आदि अंत जो राखण हार ते सुप्रीत न करे गवार जहाँ की सेवा नाम निध पावे ता सो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकर सत सदा हजूरे ताक अंधा जानत दूरे जहाँ की टहल पावे दर गहमान तिसे बसारे मुग्ध अजान सदा सदाए पूलन हार नान रखन हार पार रतन त्या कौडी संग रचे सा सूड झूठ संग मच जो सडना सो अस्तर कर मान जो होन सो दूर परान सोड़ जाए तिस का शर्म करै संग सहाय तिस पर हर चंदन ले उतारे तू ही गर्त प्रीत पसम संगू अंधकु मैं पतत बिकराल नान कढ़ लो प्रभ दयाल कर तूत पशु की मान सजात लोग पचारा करी दिन रात बाहर पेक अंतर मल माया सब सनाय कस करी सुपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर ब्यापै लो सुवान अंतर अगन बार तन सुहा गल पात्र कैसे तरी अथल जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक ते जन सह सुमात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गहल उड़ निबहावै कहाँ बुजारत पूजै डोरा निस्कहिए तब समझे पूरा कहाँ बिसन पद गावै गुंग जतन करे तौ फी सुरपंग कह पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं ओ तू आस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय हो सो आवे ना चीत जो बिराय तां सो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद कील माया रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर बरूद काम क्रोध मोह झूठ विकार मा लोभ त्रोह याहू जुगत प्याने कई जन्म नानक राख लेउ आपन कर कर्म तू ठाकर तू पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रा तू मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुकनेरी कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूतर तार तुम ते सुआग्याकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ सोड़ के लग अण सुवाए नानक कहू न सीजई पिण नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पासे पावै एक बस्त कारण बेखूड़ गवावै एक पी ना दे दस पी हिरले तौ मूड़ा कहा करी
ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸੂ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੇ ਸਾਧ ਨਮਸਕਾਰਾ ਜਾਂਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪਰਾ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੂਤਾਊ ਮਨ ਉਠਾ ਜੇ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸਰਬ ਤੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਅਗਣ ਦਸਾਉ ਆਪਣੀ ਦੇਰਾ ਖਾਦ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਣਕ ਬਰਸਾਲੇ ਅਗੇ ਅੰਨੀ ਮਨ ਰੂਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਹੈ ਬਰਸ ਕਾ ਵਿਸਵਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਿਸ ਕੀ ਬਖਤ ਸੇ ਆਗੇ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ ਮਾਥੇ ਉਸਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਅਣਕ ਭਾਤ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੀਦ ਸਰ ਪਰ ਓਵਣ ਜਾਣ ਨੇਤ ਬਿਰਕੀ ਸਾਇਆ ਸੂਰੰਗ ਲਾਵੇ ਓਬਣ ਸੁਓ ਮਨ ਪੁਸਤਾਵੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਚਾਲਣ ਆਰ ਲਪਟ ਰਹੇ ਉਤੇ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਬੈਠਾਉ ਸੋ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇਹ ਤਾਂ ਕਵਾਥਣ ਆਵੇ ਕਿ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਉਗਣ ਤਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਅਸਤੀ ਅਸੁਭ ਵਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇ ਖਸਤਾ ਮਿਥਿਆ ਤ੍ਰੂ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਆਪ ਸੁਪਰਕਰਤ ਗੁਮਾਨ ਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧਕੀ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਮਿਥਿਆ ਅਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰੈ ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਕ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੁਪਾਦ ਮਿਥਿਆ ਰਸਣਾ ਭੋਜਨ ਸੁਆਦ ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬੇਕਾਰ ਕੋ ਤਾਵ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲਭਾਵੈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਆਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਬਾਸਲੇ ਤੋ ਬੇਕਾਰਾ ਬਿਣ ਬੂਜੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਪਏ ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਈ ਬਿਰਤੀ ਸਾਗਤ ਕੀ ਯਾਰ ਜਾ ਸਾਜ ਬਿਨਾ ਕਹਿਓ ਸੁਚਾ ਬਿਰਤਾ ਨਾ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ ਬਿਣ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਜਉ ਕਿਰਪਣ ਕੇ ਨਰਾਥ ਦਾਮ ਤਨ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਕਟ ਬਸਿਓ ਅਰ ਨਾਉ ਦਾਨ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਬਣ ਜਾ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਸਵਰ ਕੁਮਾਵਤ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਖੋਗਣ ਲਾਵਤ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਬੀਨ ਬਾਰ ਪੀਗ ਨ ਕਾਉ ਪੀਣ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ ਆਪ ਨ ਕਰੈ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੇ ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਧਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਨੀ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਨੈ ਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ ਮਾਨੈ ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤਨ ਬੇਰਾ ਕਿਤੇ ਦੂ ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੇ ਬਜਾਵਤ ਨੇਰਾ ਪਾਪ ਸਿਆਣ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਾਹ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਾਹਤ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ ਤਾਂ ਤਨੰਤਰ ਆਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਆਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤੇ ਠਾਕਰ ਕੋ ਰਖਮਣ ਮਾਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਨ ਲਾਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੇ ਤਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਸਦਾ ਮਣੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਣਾ ਆਠ ਪੈਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਾ ਤਿਆਈਐ ਧਿਆਵਣ ਜੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾੜ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਕਥ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੋਈਜੈ ਮਨ ਆਠ ਪੈਰ ਤਾਂ ਕਾ ਜਸ ਗਵੀਜੈ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਣ ਬਖਾਨੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਤਰੁ ਮਨ ਸਦਾ ਤਿਆਇ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਉ ਦਰ ਗੈ ਮਾਨ ਪਾਵੈ ਨਾਨ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੈ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਉੱਲਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਮਨ ਸੋ ਪਾਵੈ ਹਾਰ ਹਾਰ ਜਸ ਕਹਿ ਤਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਸਿਦਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕਉ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੂਖਣ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਉ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਬੂ ਨਾ ਬਸਾਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਖ ਤਣਾ ਰਾਗ ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਣਾ ਜਿਣ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਇ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਤ ਸੇ ਤੇ ਆਈ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਏ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
जी प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका त्यान। जी प्रसाद तू आचा और बिहारी, तिस प्राप को सा सा चेतारी। जी प्रसाद तेरा सुंदर रूप सुप्रा सुमरु सदानू। जी प्रसाद तेरी निकी जा सुप्रा सिमर सदा दे रा। जी प्रसाद तेरी पत्र गुरु प्रसाद नानक दास कहे। जी प्रसाद सुनो करना, जी प्रसाद पिके विस्माद। जी प्रसाद बोले अमृत रसना, जी प्रसाद सुख सह जी बसना। जी प्रसाद अस्त कर चले, जी प्रसाद सुपूर्ण फले। जी प्रसाद परमगत पावे, जी प्रसाद सुख सह सुमावे। ऐसा प्राप्त त्याग अवर कत लग, गुर प्रसाद नानक मन जग। जी प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्राप को मूल लमण बसार। जी प्रसाद तेरा परता परे मन मूड तू ता कौ जाव। जी प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा जूर। जी प्रसाद तू पावे साचरे मन मेरे तू ता सोरा। जी प्रसाद साहब की गा तुए नानक जाप जपै जप सोए आप। जपाए जपे सो ना आप, गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुई प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्ब निदान प्रभ तेरी माया, आप है कस न किनु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानकेन कह कस ना हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कही सुमुगता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साजना की अचरज कथा अष्टपदे। साधक संग मुख उजड़ हो तू, साध संग मल सगली खो। साधक संग मिटे बिमान, साधक संग प्रगटे सो ज्ञान। साधक संग बुझे प्रभ नीरा, साध संग सब उतन बेरा। साधक संग पाए नाम रतन, साधक संग उपर जतन। साधक महिमा बरने कौन परानी, सा नानक साध की शोभा प्रभ मैं समानी। साधक संग गोचर मिले, साधक संग सदा प्रफुले। साधक संग आवे बर पंचा, साध संग मंत्रा पुंचा। साध संग सब की रेन, साधक संग मनोहर बैन। साधक संग ना कथू तावे, साध संग स्थित मन पावे। साधक संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सा मी, साधु के संग महापनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साधक संग न बिगा पैर। साधक संग नाई को मंदा, साध संग जन परमानंदा। साधक संग नाई अवताप, साधक संग तजे सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभ बन आए। नानक साध प्रभु बन आए, साधक संग न कब होता वै। साधक संग सदा सुपावै, साध संग बस्त अगोचर लय। साधु कै संग अजर सह, साधक संग बसे थन उचै। साधु कै संग मैल पहुंचै, साधक संग दृढ़ सब धर्म। साधक संग केवल पार ब्रह्म, साधक संग पाए नाम निधान। नान साधु कै कुर्बान, साधक संग सा कुल दार। साध संग साधन मीत कुटम निस्तार। साधु कै संग सो तन पावै, जे तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग सोभा सुरदेया। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधक संग था सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साधक संग नहीं कस कालू, दर्शन भेड़ तो होत नियालू। साधक संग कलोक तहरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग आवा सोहेला, साध संग मिसरत हर मेला। जो सह सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरे साध सुन रसै। साधक संग सुनु अर नाओ, साध संग अर की गुण गाओ। साधक संग न मन ते विसरे, साध संग सर पर निस्तर। साधक संग लगे प्रा मीठा, साधु कै संग घड़ घड़ डीठा। साध संग पै आग्ञा करी, साध संगत पई हमारी। साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा बेदन जान है, जेता सुने ते तब क्याने। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रे भरपूर। साध की शोभा का नाहीं अंत, साध की शोभा सदा बेन।
ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੁੱਚੀ, ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੇਦ ਨ ਭਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਕੇ ਇਕ ਬਿਨ ਕੋਈ, ਨਾਨਕੀ ਲਸਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਦਾ ਨਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਤੀਰ ਚੀਕ ਜਿਉ ਬਸਤਾ ਕਉ ਕਉ ਦੇ ਕਉ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਏ ਗਨਾਉ ਨਾਨਕ ਜੋ ਭਾਵ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਜਮੈਲ ਨ ਲਾਗੇ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਤਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰੁ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਹੀਂ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਲ ਕਿਰੀਨਾ ਤੁਮਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਸਪੁਰਾ ਨ ਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਯੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਪੂਜਣ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੋ ਮਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਤੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਤਾਵਤ ਬੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਉਹ ਸੁਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਭਲ ਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਦਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੇ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਗੋ ਤਿਆਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਕਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿ ਨਿਵਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ ਅਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਆਦੇਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨ ਜਾਇਦ ਅਖਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤਨ ਅਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰਾਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਣੀ। ਸਲੋਕ ਔਰ ਤਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਭੇਖੈ ਭਗਵਾਨ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪਰਸ ਸਗਲ ਨਸਤਾਰ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਈ ਰਸਣਾ ਪਰਸ ਮਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਾਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪਣ ਭੇਖੇ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਕਰਨ ਸੁਣੇ ਕਾਉ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੇ ਮਨ ਕੀ ਵਾਸਣਾ, ਮਨ ਤੈ ਟਰੈ ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਗ ਤੇ ਰੈ, ਤਨਾਨ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੁਐ ਸਾ ਪਰਸ, ਬਹਿ ਸੁਣੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਿਸਣ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਵੈ ਨਹਿ ਕਰਮ, ਤੇ ਸਬੈਸ ਨੂੰ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਕਾਉ ਫਲ ਕੀ ਸਾਨੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ, ਮਨ ਧਣ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਭ ਉਪਰ ਓਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਪ ਦਰੜੈ ਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਨਾਨਕੂ ਬੈਸਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ,
मन ते बिन से सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म सौ संग पापा मलकूवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करे नितनीत मन तन अर्पे बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम आत्म है सो दे राम नाम सार राज पीवी उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै भी प्राण सिमरत बूजै मूल सुखो मैं जाने अस्तूल। चौ वरना कौ दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान चौ वरना मैं जपे कौ नाम जो जो जपे तिसकी गातु ए सा सं पावे जन कोई कर कृपा अंतर उतारै पद प्रेत मुद पात्र कौ तार। सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जोत किते ना पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम ते नदरी है दाद संतन पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जान सूदा दरगह परवान अपने दास कहो आप कृपा करै ते दास कहो सब सो जी परै सगल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आगे आत्म है तावै जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा अर्क तैसा सुसोग सदा अनंत है नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा महान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताय साई जुगत नानक पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म की सगले ठाओ जित जित कर राखे तैसा तिन नाव आपे करन करावन जोग प्रपावै सोई फणोग पचरुआ पोए अणत तरंग लखे न जाय पर ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंतन पारावार नानक रचना प्रभ रची पौ विद्यनक प्रकार अष्टपदि कई कोड होई पुजारी कई कोड आचार व्यवहारी कई कोड पै तीर्थवासी कई कोड बन भरमै उदासी कई कोड वेद के स्रोते कई कोड तपी स्रोते कई कोड आत्म ध्यान तार है कई कोड कब का विचार है कई कोड नवत नाम त्यावै नानक करते कंतन पाव कई कोड पय अभिमानी कई कोड अंध अज्ञानी कई कोड किरपन कठोर कई कोड आपे ज्ञात मिने कूर कई कोड पर दर्ब कोई रह कई कोड पर दुखना करे कई कोड माया सरमाय कई कोड परदे परमाहि जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोड सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोड पंकी सरपो पाए कई कोड पाथर बिरख न पजाए कई कोड पावन पानी बै संतर कई केड कोड देश भूमंडल कई कोड ससियर सूर नखत्र कई कोड देव दानव इंदर सिर सतर सगल समगरी अपने सूत तारे नानक जिस जिस पावै तिस तिस नस्तार कई कोट राज स्ताम साथ कई कोट वेद प्राण सिमरत अर साथ कई कोट कीरतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जन कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच सब ते नेरे सब उते दूर नानक आप अलिप रहा भरपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्मै जीवै मरै कई कोट बवजोनी फिरै कई कोट बैठते ही खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट किए तणवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाणा तह तह राखे नानक साहब किस प्रभ कहे हाथे कई कोड पय बेरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोड प्रभ कहो खोजंते आतो मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोड दर्शन प्रभ प्यास तिन को मिलो प्रभ अविनाश कई कोड मांगे सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग
जिन कोई आप सुप्रसन्न नानक तीजन सदा तन तन कई कूड़ खानी अर खंड कई कूड़ काज ब्रह्मण कई कूड़ हो अवतार कई जोत किनू विस्तार कई बार पसरूप सार सदा सदा एक ओंकार कई कोट कीने बहुपात का रब ते होई प्रमाए समाता कांतन जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोई कई कोट पार ब्रह्म के दातिन हो त्या तुम प्रगाए कई कोट तात के बीते सदा निहार हो एको नेत्रे कई कोट नाम रह पीवे मर पय सा साधी जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुन सहज सुख सहज समावे अपने जन को सासा सुमारे नान कोई परमेसर के प्यारे स्लोक करन कारण प्रभ एक है दूसर नाई कोई नानक तिस बलहार नै जल तलमई असोई अष्टपदि करन करावन करना जोग जो तिस पावे सोई ओ खिण मै था बहुत अपन हारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तार अतारा हावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अणक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी बड़े आई नानक सामै रहा समाई प्रा पावे मान गत पावै प्रा पावे ता पात त्रावै प्रा पावै बिन सात राखै प्रा पावे तार गुण पाखै प्रा पावे ता पत तो तारे आप करे अपन विचार दुहा सरिया का आप स्वामी खेले विकसे अंतर जाम जो पावे सोकार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानुख ते क्या होया वै जो तिस पावे सोई करावे इसते हाथ होए ता सब किसली जो तिस पावे सोई करे अणजानत बिख्या मैं रची जी जानत अपने आप बचै पर मैं पुला दै दिस्तावे निमख मैं चार कुंट फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम ले खिण मैं नीच कीड़ कहो राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृष्ट कसुनावे तिस तत्काल दै दिस प्रगटावे जा को अपनी कृपा करे अपनी करे बख्शीस ता काले खाना गणे जगदीश ज्यो पिंड साव तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बालाए सहात करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई फुणतीयो कबू ऊंच नीच मैं बसै कबू सूग हर करंगा सह कबू निंद चिंद व्यवहार कबू उवाकाश पायाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानकिया मिलावन हार कबू नृत्य करे बहुपात कबू सोई रहे दिन रात कबू महाक्रूर विकराल कबू सर्ब की उतरवाल कबू होए बे बड़ राजा कबू पेकारी नीच का साजा कबू अपकीर्त मैं आवै कबू पला पला कहावै जो प्रभ राखे ते वही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहे कबू होए पंडित करे बखयान कबू मूण तारी लावे त्यान कबू तड़ तीर्थ स्नान कबू से साधक मो ज्ञान कबू कीट अस्त पतंग होए जी आणक जोन परमे परमे आ नाना रूप जो सुहागी दिखावै जो अर जो प्रा पावे तवै नचा जो तिस पावै सोई होई नानक दूजा वरना कोई कबू सा संत ए पावै उस स्थान ते बोर नावै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनास मन तन नाम रते करंग सदा बसै पर ब्रह्म के संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्राप के साथ कुर्बान सलोक सुखी बसे मस्कीनिया आप नवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसकी अंतर आय विमान सो नरक पाती ओ सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो उत्पिष्टा का जंद आप को करवंत कहावै जनो मरे बह जोन परमावै तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्खांदा आग्ञान कर कृपा जिस कहर दै गरीबी बसावै नानकी हा मुक्त आगे सुख पावै तनवंता हो कर गिरबावै तृण सुमण कर संगना जावै बहुलस कर मान ऊपर करे आ पल पीतरता का हुए बिना साव ते आप जाने बलवंत खिण मैं हुए जाए पसमंद किसे न बदे आप अहंकारी तरम राय तिस करी खुआरी
गुर प्रसाद जाका मिटे विमान सू जन नानक दरगह परवान करोड कर्म करे अवतारे सरम पावे सगले बिरतारे अनक तपस्या तो करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगह को कैसे गवे आपस को जो पला कहावे तसे पलाई निकटने आवे सर्व की रेण जाका मन हुई कहो नानक ता की निर्मल सुई जाब लग जाने मुझते कस हुए तब इसको सुख नाही कोई जाबे जाने मैं किस करता तबला गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मी तबला ने चलना ही चीत जब लग मुह मगन संग माए तब लग तरम राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक सुटै सहस खटै लाख उठता वै तृप्त न आवै माया पास पावे अणक पू बिख्या के करै मैं तृप्ता वै कप कप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरते सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बुढ़पागी किसे प्राप्त होए करन करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावण करने हार उसके आद का विचार जैसी दृष्ट करी तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किस किनो सु अपने रंग सब ते दूर सब कै संग बूझै देखी करीब बेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक साधी रे आसमाए आप देसे समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनो आपन विस्तार सब उसका वो करने आर उस ते पिन कहो कैसो हुए थान तनंतर एक कैसो हुए अपने चलते आप करने यार कवत करे रंग पार मन मैं आप मन अपने माय नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद कने वखियानी सच सच सच सब कीना कूट मदे कने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी काट काट सुनी सरवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन पर है सो जने उधर नहार संत के निंदा नानका बौर बौरे अवतार अष्टपति संत के दुखण हार जा कटै संत के दुखण जमते नहीं सुटै संत के दुखण सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुखण मातु ए मलीन संत के दुखण सोभा तेहीन संत के अते को रखे ना कोई संत के दुखण थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखण ते मुख पवै संतन कै दुखण काग जो लवै संतन कै दुखण सर्प जोन पाए संत के दुखण तिरगत जोन करमाए संतन कै दुखण तृष्णा मैं जले संत कै दुखण सब को सड़ै संत कै दुखण ते सब जाए संत कै दुखण निजन चाहे संतो की कहु थाउ को नाए नानक संत पावे ता उइ पी गत पा संत का नंद कुमात ताई संत का नंद घंटे का न पाए संत का नंद कुमाते आरा संत का नंद परमेश्वर मारा संत का निंदक राय तीन संत का निंदक दुखी आर दीन संत के निंदक कौ सर्व रोग संत के निंदक कौ सदा भेजो संत के निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावे ता उस पा उस का पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी कौ डान लाग गया संत के दुखी को सब त्याग गया संत का दुखी माँ अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुखना सुख ते डर संत के दुखी को नाही ठाउ नानक संत पावे ता लई मलाए संत का दुखी अद बीत टूटे संत का दुखी किति काज ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते तो था ज्यो सास बिना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ किस नाए आपन बीज आपे ही खाए संत के दुखी को अवर न रखना हार नानक संत पावे ता ले ओबार
संत का दुखी एव बिललाए जो जाल बिहुण मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा जो पावक ईता नहीं त्रापै संत का दुखी सुटी अकेला जो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी तरम तरैत संत का दुखी सद मिथ्या कैत कीर्तन का तुरी पाया नानक जूत भावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले नरासा।

गावण तुदनु जति सती संतोखी गावण तुदनु वीर करारे गावण तुदनु पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावण तुदनु मोहनिया मन मोहन स्वर्ग माछ पयाले गावण तुदनु रतनो पाए तेरे आठ साठ तीर्थ नाले।

सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे कीता आपना जिब तिसदी वड्याई ज्यों तिसदी वड्याई ज्योतिष भावै

शांति चौपाई अमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सब तुम गावो आप हाथ महे बचावो सुखी बस है मोरो पर बारा सेवक सिख सभा कर तारा मोर अशा निज कर दय करे सब वैरुण गुवा संग रहे पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अपना त्याऊं जो भर जाऊं सो तुम ते बाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सदर हमारे मारिया भाद मुझे भर है मरण काल का त्रासन भर है उजो सदा हमारे पच्छा श्री तुजो करियो रक्षा राख रियो मय राखण हारे साहेब संसाय प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो बरी चतुर्दश गंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा

काल सब जगत बनायो देव दैन जशन उपजायो आदंते के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार सीखो हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सेवकन गो सेवकन सुख दियो सत्रण गो बल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर बशानत चीटी ते गुंचरिया स्थूला सपर कृपा दुष्ट कर भूला संदन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन गे सुखी

जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सबहू कह सुनाए, कब बाज दोहरा ठाट भयो मैं जोर कर बचन गां सिरणे आए। पंथ चलै तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा, जे जे तुमरे ध्यान को नितुड़ ध्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान दोहरा। कालपुर की देह मो कोटक विष्ण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सस क्रूर जरे दोहरा। राम कथा युग युग अटल सब कोई भागत नेत, सुर्गवास रघुबर करा सगरीपुरी समेत चापई। जो ये कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट न आवे, विष्णु भक्त की ए फल होई आद ब्याद शुभ सके न कोई। समत सदरा सहस पचामन हाड वधि प्रतम सुख दावन त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, पूल परी लव लेव सुधारा दोहरा। नेत्र तुम के चरण तार सद्रव तीर्थ रंग, श्री भगवत पूर्ण की ओर अकबर कथा प्रसंग दोहरा।

0: जहे तेरा ना हो ले ले के तर गए ने
1: सच्चे परबुजगार तेरा जस गाजंद सफली कर।

0: संत साजन महेश्वर से पूरे गुरदे जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा पर पूरे
1: बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे।

नित नित जेड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पाहो तेल देहो सज्जन सिसड़िया ज्यो हो वै साहिब स्यो मेल घर घर हि पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक सह देह आवन राग आसा महला पहला छह कर छह गुर छह उपदेश गुर गुर एको सनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख उड़ाई तोए राहो विश्वे चसिया कड़िया पहरा थिति वारी महो होवा सूरज एको रुतनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मैं थाल रव चंदीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलियान लो पौन चवरो करे सगल बंदराए फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पौखन्ना तेरी आरती अनता शब्द वाजंत पेरी राहो सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोई तिस दे चानन सब मह चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस पावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही पियासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर

आगे बसंत सोहेला आवद घटे दिन सरणारे मन गुर मिल काज सवारे राहो एहो संसार विकार संसे मह तरेहो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावे एहो रस अगत कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर तेह मने बसेरा निज कर महल पहो सुख सह।

वेद प्राण सिमर शुद्ध आखर किन राम नामिक आखर किन काय दे जी बसावै ताकी महिमा करि न आवै कांखी एक दरस तुहारो नानक उन संग मह उधारो सुख मनी सुख

कृष्ण काल पर हरय, प्रभु कृष्ण दुश्मन तरय, प्रभु सिमरत किच बगन ना लागै, प्रभु कृष्ण दिन जागै, प्रभु कृष्ण पौ ना व्यापै, प्रभु कृष्ण दुख ना संतापै, प्रभु का सिमरन साधक संग सर्वदान नानक हरि रंग, प्रभु का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभु का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु का सिमरन जप तप पूजा, प्रभु का सिमरन बिन सह दूजा, प्रभु का सिमरन तीर्थ स्नाने, प्रभु का सिमरन दरगाह माने, प्रभु का सिमरन होय सो भला, प्रभु का सिमरन सुफल फला, से सिमराय जनाब सिमराय नानक तां कै लागो पाए, प्रभु कृष्ण सब ते ऊचा, प्रभु कृष्ण उदरे मूचा, प्रभु कृष्ण तृष्णा बुझै, प्रभु कृष्ण सब के सुजै, प्रभु कृष्ण नाहीं जम त्रासा, प्रभु कृष्ण पूर्ण आसा, प्रभु कृष्ण मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाये, प्रभु जी बसा साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बहमता दे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा विनाशी, सिमरनते लागे जन आप दयाला, नानी जन की मंगर वाला, प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तन साध बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावै, प्रभु को सिमरै तन सुख बिहावै, प्रभु को सिमरै तन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तन अनंद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभु के सिमरन कार्य पूरै, प्रभु के सिमरन कबहु न चूरै, प्रभु के सिमरन हर गुण बाने, प्रभु के सिमरन सहज सुमाने, प्रभु के सिमरन निश्चल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन, प्रभु के सिमरन हर चुनकार, सुप्रभ सिमरन का अंत न पार, से सिमरै से जन जन को प्रमया, नानक तिन्हें शरणी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लाग भेद उपाय, हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंठ जाते, प्रभु हर सिमरन तारी सवतरना, सिमर सिमर हर कारण करना,

जय मुस्कुल हो वे अत भारी हर को नाम खिन माय उदारी अनक पुन चन कर तु नहीं तराय हर को नाम कोट पाप पर हराय गुरुमुख नाम जप मन मेरे नानक पाव सुख कनेरे।

त्रिकामंत दया करखै ते नानक हर हर अमृत बरखै। भगतना के वर्तन नाम संजना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर का नाम उदरै जन कोट। हर जस कर सन दिन रात हर रोख साध कमात। हर जन केर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान।

प्रतावदन अवरना जानी ओत भोजन हर सराते सुन सुमाद नाम रसुमाते आठ पैर जन हर हर जपाय हर का पग प्रगट नहीं छपाय।

सवत्यान खाट सासर सुमृत वख्यान जोग अभ्यास करम धर्म किरिया सगल त्याग बन मधे फिरिया अनेक प्रकार किए वो जतना पुन दान हम बरतना श्री कटाय हम कराती वर्तन हम करें भो पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरुमुख नाम जप एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चर जीव मावदा तपी सर थी व्याय अग्न वाय हो मत पराण कनका सब है वरपुम दान न्योली कर्म करे भवासन जैन मारे संयम साधन निमक निमकर श्री कटाव टोपी हो में मैल ना जाव हर का नाम संसर कथ ना है नानक गुरुमुख नाम जबत गत पाहे

त्रमे श्री धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम में उदम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जा सुरु सरस रसन बखानी सगल बानी में अमृत बानी हर को जास सुन रसन बखानी सगल थान ते ओहो उत्तम थान नानक देखट वसे हर नाम श्लोक निर्गुण आर ए अन्या सो प्रभ सदा समाल जिन किया ते सुचित रख नानक निबही नाल। रमैया के गुण चेत

तब नानक सिज जाए। जे प्रसाद तरि ऊपर सुख बसै, सुत परात मित बनता संग हसै। जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पाव का मुला। जे प्रसाद भोगे सब रसा, सुख समग्री संग साथ बसा। दिन हस पाव करने ते रसना, तिसे त्याग वर संग रचना। ऐसे दुख मूढ़ अंध व्यापै, नानक काढ़ लो प्रभ आपै।

अपने अमान कछबार सवाले अज्ञानी मदरोस करे अपनी प्रतिता पी खोवे पर उसका विश्वास ना होवे जिसके वस्तु सा कह रहा।

तेरा, उपाव श्याम सगल तेरा, तो सब जाने आ तुम की रह तो दृपावे तिलाये लड़ाए थान तरंतर सुमाए सो सेव जिस कृपा करी निम

जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुसा जय बसना, जय प्रसाद हस्त करतल, जय प्रसाद संपूर्ण फल है।

साधिका संघ दृढ़ सब धर्म साग संघ केवल पाल ब्रह्म साग संघ पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान।

करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल करे ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी सीना ब्रह्म ज्ञानी के सब परमाया ब्रह्म ज्ञान तकत बुरा ना पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सम दर्शे ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत बरसे ब्रह्म ज्ञानी बंधन तय मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल दुखता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।

ब्रह्मज्ञानी सदा सजाग ब्रह्मज्ञानी अवंति आगत ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के कर सदानंद ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुसाई निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं।

अस्पदि मिथ्यानाय रसना परस मनम प्रिय निरंजन दर्श परतरया रूप न पेख्या नेत्र साध की टैल संग हेत कर्ण

से अंतर्ध्यामी जो पावे सो कार्य करावे नानी दृष्टि अवर न आवे कौमानी से क्या हुई आवे ज्योतिष पावे सोई करावे इसके हाथ हुई था सब कुछ ले ज्योतिष पावे सोई करे अनजान बिख्या मेरे चे जे जानता अपना बचे पर मैं भूला दे दिशावे निमुख में चार कुंड फिर आवे कर कृपा जिस अपने भक्त दे नानक ते जन नाम लेखन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवास जा कर दस का चुनाव ते तत्काल दे दस भक्त आवे जा कोपनी करावे सीता का लेखा न गने जगदीश जीवन शब्द की रात कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नान जीव दे कुटाई इस काबल नाई सार करण कराव सर्व को नाथ आज्ञा करी वप्र जियो जो पावे सोई फुंधियो कबो नीच में बसाय कबो सोग हर खरंग हसाय कबो नंद चंद व्यवहार कबो बकाश पयाल कबो बेता ब्रह्म विचार नान का मिला बनार कबो नृत्य कर भोपाल कबो सोए रह दिन रात कबो महाक्रोध विकराल कबो सर्व क्यों त्रिवाल कबो होय बह राजा कबो बेखारी नीच का साजा

छूटाए। सैस खटे लख कोड़तावे त्रुतनावे माया पाछे पावे अनक भोग बिकिया के करै न त्रुतावे खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राज जाय सुपन मनोरथ सब का जाय। नाम रंग सर्व सुखोय बड़भागी स प्राप्त होय कनक रावन आपे आप सदा सदा नानिखर जाप कनक रावन करना हार इसके हाथ कहा बीचार जैसे।

Parvam kejasman pukha nanasana laka dukha diskvarbraman chatiyave so santsuhela nahindulave disprapna kirupa kre so seve kokiste darai desa sata sadisaya apne kardhuya sumaya soda sidhya gurpasata sabhujya जब देखो तब सब किच मूल नानक सो सुखम सोय सुतूल न किच जन्मे न किच मरे आपन चलत आप ही करे आवन जाव दृष्टन दृष्टा के करे तारी सब से चापे आप सगल में आप अनक जुगत राय था प्रताप अविनाशी नाय किच कान तारन तार रहे हो ब्रह्मांड अलाख पेपर पर चाप आप जो पैथान जाप जन प्रभ जाता सुसुभावंत सकल संसार उदर तिन मंत प्रभु से सकल उदाहरण प्रभु से दुख विस्वारण आपे मेल नहीं कृपाल गुरु का था जब निहाल उनकी सेवा सोई लाग जिसन कृपा करें बड़ पाग नाम जो पावे विश्राम नान तिन पुरख को उत्तम कर्मान

पाह्य दूसौ प्रवदेव नहारुअवर्त्याग तुतार जो कथकरा सोई सुकुमान पुलकाय ब्रया जान कौन बत आयतरा संग लपट रे रसलोभी पतंग राम नाम द फिरदे माए नानक पस्यति कर जाहे जैस

भगत भगत सुनिय तैलोए जाके हृदय को होए सत करनी सहता की रहत सत हृदय सत मुख कहत सत सच आकार सत वर्त सच अपसार पार ब्रह्म सत गिरदाता नानक।

पे कराई करंग नाना बेदकिनो विचार प्रवना से एक अंकार नाना चल कर खनमाए पूर्ण सब उठाए नाना विध करबंत बनाई अपनी कीमत आपे।

सब साता पैदाने अपने मत का जिसके सिर सो करने हार वरना बूझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नानंद ज्योतिष पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पाए बिस्म।

उसी पहे सत्य अष्टपदी चरण सत सत पर सुनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पे कनार नाम सत सत्यावनार आप सत सत सवतारी आप गुण आप गुणकारी सब सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जब सुनता पूजन को सत सब होए नान सत सत प्रभ सोए सात सर्वदय जनमान्य करण ग्राम निर्मूल बिछाने जा कर दे विश्वास प्रभाया तात ज्ञान तिज मन प्रगटाया पैत निरपो है बसाना जिते उदय तिज माय सुमना बस माय ले बस गड़ाई ता गोपिन न कहन जाय बुझे बुझन हर बाबे एक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर का सेवक है मन भरती ठाकुर के सेवक के निर्मल ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेव नाम के रंग सेवक को प्रभु पारण हारा सेवक की रा केन्द्र कारा सो सेवक जिस दया प्रवतारे नाने सो सेवक साथ साथ सुमारे अपने जन का प्रदा ठाके अपने सेवक के सर पर रखा है।

निके गिरी में कद राखे वसम करे लश्कर गोटो लाख है जिसका स्वास न करता अवचा को राख देख रहा मार जतन करत भो पा जिसके करत वृथ जात मार न राखे वर न कोई सर्व जिया का राख सोय का है सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभा लख हुंडाणी बारियों बार बार पर जो पे पी अमृत हो मानत अंतर पिया।

कमला स्वतमित गोटम्बर बिन्तायन्ते कहो तुम कवन सुनाता राजरंग माया विचारन्ते कहो कवन छुटकारा सतीरा सतवारी चुटोड़म चूट पसारी जिंदिया तुझ भजना बिगना ना विचार नानक पहचाना गुर की मत तुले याने भगत बिना बड़ू बेसने हर के भगत करो मन में निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माया जन्म जन्म के गिर बताए आप जो पोबरा नाम जपाओ सुनो क्या दरात गल पाओ सार पु सतर को नाम सहस भाई नान गुन गाओ गुण गाव तिर उतर सुमैल बृंदाय मैं बिग पैल ये चंद्र बस सुगनाल सात गिरा सुर नाम सुमाल छाड़ सनम सगली मना सा संग पावे सह चना हर पुंजे संत करो बिह आर्या सुदर गा जयकार सर्व निरंतर एको देखो नाना जा कि मैं सोले एको जप एको सलाख सिमर एको मन एक गुण गाव नंद मन तन जाप एक भगवंत एको एक हरिया पूर्ण पुर प्रभ्या अनक विचार एक दब एक रात प्राचित कह मंत्र अंतर एक प्रवृत गुरु प्रसाद नानक दाता स्वरूप फिर तुप्रत प्रभाया पर सुरनाये नानक प्रभ अपनी भक्ति लाया जाते जन जाते प्रवदान कर कृपा देव हर नाम

जय निरंजन रंका निर्वांता कौन को मान कौन अभिमान जसरूप केवल जग देता छल चदर लगत को केस जय ज्योत स्वरूप जो संग समाव चय किस कवन द्रवताव कर्ण करावन कर्ण हार नानक करते करना है सुमार तब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन माई बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला पे प्रवीण।

सब आपे सचियार। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सिव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए पाहो, दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहिया समाई।

देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कूट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछुताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्ध।

सर्वासूत अंगीन पंगनात्मेक पुरखपार सर्वलायक सर्वकायक सर्वप्रतपार सर्वगंता सर्वंता सर्वतेन वे सर्वशास्त्र न जाने जे रूपरंग अर्रेह परम वेद प्राण जाके नेत भाक्त नित कोट।

असंभ अगम है, अनिल है, अनाद है, अनत्य है, सुनत है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्व प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं गर्वं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, सबल शांत त्व प्रसाद। नमो नर्गनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं सुरभे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाते अगा सुरभे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रभंगी त्रिकामे नृभंगी सुरभे सर्वंगी अनुपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्तरे न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते नरसाकं श्रीक मितमीक सदैवं प्रवाह अजाय अजाह भगवती शांत त्व प्रसाद। के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, मैसुल सलाम है, समस्तुल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के सुन चिराग है, के कामल करीम है, के राजग रहीम है, के रोजी दहंद है, के राजग रहिंद है, करीमुल कमाल है, के सुन जमाल है, करीमुल खराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल शिकन है, रासल फिकन है, कलंगंग प्रनास है, समस्तुल निवास है, गंजुल करीम है, रजाय रहीम है, समस्तुल सुबह है, के साहिब करा है, के नरकम प्रणासंग बहस्तुलवास है, के सर्वुल गवान है, मैसुल गवान है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परंग परमीश है, समस्तुल अदीसा, देशुल लेख है, मैसुल अभेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल के जुरत जमाल है, के चलंग प्रकाश के मितो सुभाष के अजब स्वरूप है, के मितो विभूत है, के मितो प्रसाह के आत्म प्रभा है, के चलंग अनंग के मितो अभंग मदभार शांत त्व प्रसाद।

गुनगुन प्रणाम जल थल मुदाम अंश अंग आसन भंगमा अपार गतमित उतार जल थल अमंड दिस जपण जल थल महन दिस बेअंत भवनाथ तिरथर तुरास आ जान बाहु एक सदाहु ओंकार आद कथनिया नाद खल खंड ख्याल गुरु प्रकाल कर कर प्रणाम चितर नाम अंश जगात अजना बात अन झंझगात अंदरंज बात अंटुट भंडार अंठट अपार आ डीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रण आनंदाता महंथर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अर्घालय है कल खंड है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जाके कर्ण है मन मान है जग जान है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है।

करुणा करते हैं, अकर्ता करते हैं, धरनी धरता है, मतेश्वर है, परमेश्वर है, कर्ता करते हैं, अमृता अमृत है, अजवा करते हैं, अमृता अमृत है, नर नायक है, खलगायक है, विश्वंबर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, पपंजन है, अर्गंजन है, रपतापन है, जब जापन है, अकलं करते हैं, सर्वा करते हैं, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्मा है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात शांत। नमो सूर्य सूर्य।

आई। जे सतगुरु सिमरंत नयन के तिमिर मिटे खेन, जे सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जे सतगुरु सिमरंत जी की तप्त मिटावे, जे सतगुरु सिमरंत

0: तो अमृत वेले आशा की वार दे कीर्तन सरवण कर रहे सो कीर्तन सरवण करवा रहे सन भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहब अमृतसर तिना का बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुर नो सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्त ना हो वई जिचर शब्द ना करे विचार। आओ अमृत वेले आए मुख वाक हुक्मनामा साहब दी विचार सरवण करते हाँ। हुक्मनामा दी विचार सरवण करा रहे हैं भाई साहब भाई हरजीत सिंह जी सुल्तानपुर लोधी वाले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: Thank you.

जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पितर जुड़ जुड़ बैठी साध संग जी बड़भागी हो। आप जी अमृत वेले तो ही गुरु साहिब दरबार दी हाजरी भर रहे हो। अमृत वेले तो ही गुरु घर विखे जुड़ के संगती रूप च नाम जप के पवित्र गुरबाणी पढ़ सुन के कथा कीर्तन सरवण करके गुरु घर विखे सेवावां करके सतगुरु जी दी खुशियां प्राप्त कर रहे। सतगुरु साहब जी कृपा करन, आप आई समूह संगत दी हाजरी दर प्रवान करन, दरों करों गुरु सिखी जीवन नाम दान बख्शन। कल शनिश्वरवार शाम दे रारा साहब जी दे पाठ तो उपरंत रोजाना की तरह कथा कीर्तन दरबार सजन गए ते कल रात ही 9 बजे तो लैके सवेरे अमृत वेले 3 बजे तक यूथ बच्चों वालों कीर्तन होणगे। सारी रात कीर्तन दरबार हुण सजणगे। आप जी ने हाजरी भरनी है जी एतवार दे विशेष दीवान मौजूदा संघर्ष दौरान हुए समूह शहीदां दी यादां विच एतवार दीवान साजरे हन। अज सवेरे जिथे परिवारां वालों खंड पाठ साहिब प्रारंभ होणगे गुरद्वारा साहिब वालों 10 बजे, इस संबंध में श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होने जा रहे हैं। ऐतवार के कीर्तन कथा ढाडी दरबार शहीदा सिंघा की याद में सजनगे। आप जी ने हाजरी भर के राहे प्राप्त करने जी। इतने अमृत बलिदान की संपूर्णता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मन उदरै प्रभ हुए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं छत्र चमर तख्त आसन प्रचंत मूढ़ अज्ञान अंधे नानक सुफन सुपन मनोरथ माया सुपने हब रंग मानिया मिठड़ा मिठा लगड़ा मोह नानक नाम विहूनिया सुंदर माया त्रोह पौड़ी सुपने सेती चित मूर्ख लाए बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया हार जा गई विहाए तंदे ताया पूर्ण भय न काम मोहया माया क्या विचारा जंत जाया पुपलाया सलोक बसंत स्वर्ग लोक जितते पृथ्वी नव खंडन बसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमण कौतक कोड तमासया

उजड़ सोई था पौड़ी महाप्याणी उद्यान नगर कर मान्या झूठ समगरी पेख सच कर जान्या काम क्रोध अहंकार फिरे देवान्या सिर लगा जम डंड तां पछतान्या बिन पूरे गुरदेव फिरे सैतान्या सलोक राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भ गर्भत सचंत विखिया शलंग शिदरंग नानक बिन हर संग ना चालते बिखंदड़ो की ना पुल तुम्मा दिसम सोहना अड ना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुली माया पौड़ी चल दया नाल ना चल सो क्यों संजी आए तिस का कहो क्या जतन जिस ते वंजी आए हर विसरह क्यों त्रिपतावे ना मन रंजी है प्रभु छोड़े अन लागे नरक समंजिया ओ कृपाल दयाल नानक पौ पंजी है श्लोक नच राज सुख मिष्टंग नच भोग रस मिष्टंग नच मिष्टंग सुख माया मिष्टंग साध संग नहर नानक दास मिष्टंग प्रभ दर्शनंग लगड़ा सोने हो मन मजाहू रतिया विदड़ो साप सच थोक नानक मिठड़ा सो तनी पौड़ी हर बिन कछु ना लाग गई भगतन को मीठा आन सुवाद सब फीकिया कर निरनाव डीठा अग्यान परम दुख कटिया गुर भय बसीठा चरण कमल मन बेदया ज्यो रंग मजीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिन से सब झूठा सलोक त्यागत जलंग नह जीव मीनंग नह त्याग चातरक मेघ मंडल है बाण वेदंच कुरंग का नादंग अल बंदन कुसुम बासन चरण कमल रचंत संत नानके आन न रुचित मुख दिखाऊ पलक छड आन ना देऊ चित जीवन संगम तिस तनी अर नानक संता मित पौड़ी ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे बूंद विहूना चात्र को क्यों कर तृपतावे नाद कुरुं के बेदया सनमुखी उठतावे भवर लोभी कुसुम बास का मिलियाप बंधावे त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अकावे सलोक चितवंत चरण कमलं सा सा सियाराधन न बिसरंत नाम अचुत नानक आस पूर्ण परमेश्वर सीतला सीतड़ा मन मजाऊ पलक ना थी वै बार सीतला मन मजाए पलक ना थी वे बाहर नानक आसड़ी नवाहे सदा पिखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कबूं चूरी है।
देहो दर्श मन चाओ लह जाए वसूरिया। होए पवित्र शरीर चरना धूरी आय पार ब्रह्म गर देव सदा हजूरी आय। श्लोक रसनायो चरंत नाम श्रवण सुनंत शब्द अमृत नानक तिन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है। हब कूड़ा वे कम इक ससाई बाहरे नानक से तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी। सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान नवावे प्रभ मथा। हर जस लिखे बेअंत सुहै से हथा जन चरण पनीत पवित्र चालै प्रभ पथा। संता संग उदार सगला दुख लथा। श्लोक भावी आदोत करण हर रमनं संजोग पूर्ण गोपाल दर्शन पेटंत सफल नानक सो मुहूर्त। कीम ना सका पाए सुख मिति हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी। सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संजोग है जित मिले गोसाई। आठ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पूजाई वड़ै भाग सत संग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। श्लोक पतत पनीत गोविंद सर्व दोख निवारण शरण सूर भगवान जपंत नानक हर हरे। हड्यो हबे छड्यो हबे आप लगड़ो चरणा पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रभ बेखंदया पौड़ी। मेल लहो दयाल तै पै दुआरिया रख ले वो दीन दयाल परमत बहु हारिया। भगत वचल तेरा बिरद है पतति उदारिया तुझ बिन नाही कोय बिनो मोहे सारिया कर गले हो दयाल सागर संसारिया। श्लोक संत उदरन दयालं आसरं गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेन ओट नानक परमेश्वर। चंदन चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटी काम शीतल थीव नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी। चरण कमल की ओट उधरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरभउ भय मन। तोटन आवे मूल संचया नाम धन संत जना स्यों संग पाइए वड़े पुन। आठ पैर हर त्याए हर जस नित सुन। श्लोक दया करण दुख हरण उच्चरण नाम कीर्तन। दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत नाम आया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन्यो पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी।
जा प्रभ पै दयाल ना व्यापे माया कोट अगा गए नास हर एक त्याया निर्मल पै शरीर जन धूरी नाया मन तन पै संतोख पूर्ण प्रभ पाया तरेक टंब संग लोग कुल सुभाया सलोक गुरु गोबिंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण गुर दयाल समरथ गुर गुरु नानक पतति उदारण भवजल बिखम असगाहु गुर बोथ है तारियाम नानक पूरक राम सतगुर चरनी लगे आ पौड़ी तन तन गुरदेव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब पे ता अवगण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचों उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने आप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंते को सुनियंते को वर्तंते को नरहर नाम दान जाचंत नानक दयाल पुरख कृपा करे हिक सेवी हिक संवला हर इक सपैर दास नाम वखर धन संचया नानक सची दास पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एहो सब किछ आपे आप दूजा कहां के हो।

रहाउ। बिन सिमरना जो जीवन बलनाउ, सर्प जैसे अरजारी नव खंडन को राज कुमावे, अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन्ही गाए, जांको कृपा धारी सो सुखिया धन्य उस जन्मा। नानक तिस बलिहारी, टोडी महला पंजवा, घर दूजा चौपदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद तायो रे मन दै दिस थायो, माया मगन सुआद लोभ मोहयो, तिन प्रभ आप भुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत स्यों,

पर ग्रह जो हन जायो। चरण कमल स्यो भाओ ना कीनो, न सत पुरख मनायो। तावत को तावे बहुपाती, ज्यों तेली बलद परमायो। नाम दान स्नान ना कियो, एक निमख ना कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तो खियो, नह बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं सतगुर सेव त्यायो। पंच दूता रच संगत गोसट, मतवारो मद मायो। करो बेनती साध संगत, हर भगत वचल सुन आयो। नानक भाग परयो हर पाछै, राख लाज उपनायो। टोडी महला पंजवा, मनुखा बिन बुझे बिरथा आया। अनक साज सिंगार बहु करता, जो मृत के उड़ाया रहा। ताए ताए किरपन शर्म कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा, किति ही काज न आया। खरिया वरण सवारी से जा, कामन थाट बनाया। संग न पायो अपने परते, पेख पेख दुख पाया। सारो दिन समजूरी करता, तुहे मुछले तह तुहे मुसले शराया। खेद भयो बेगारी न्याई, कर कह काम न आया। भयो अनग्रह जांको प्रभ को, तिस हृदय नाम बसाया। साध संगत कै पाछे परयो, जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा, कृपा निद बसो हृदय हर नीत। ऐसी बुद्ध करो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रा। तास तुम्हारे की पावो थूरा, मस्तक ले लावो। महापद ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आग्या तुमरी मीठी लागो, कियो त्योहारो पावो। जो तू दे तही ए त्रिपत, आण न कतू तावो। सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी, सगल रेण होए रहिया। साधु संगत होए प्राप्त, ता प्रभ अपना लही है।

ओंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण गाम राम राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की शाम ताए ताए बहु बिद को तावे सगल निरार्थ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो।

तीनें ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ता को बिगुर न को लागै जांकी प्रभ आगे अरदास संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रवेक बाल बुद्ध पूर्ण सुख दाता नानक हर हर टीका टोडी महला पंजवा हर हर

जाऊ। अपन राम नची नोखिनुहा, जो पराई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बिसायो, छोड़ जाए बाहु चित लायो। सो संचयो जित भूखत सायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परिया, गुर प्रसाद नानक को तरिया। ढोडी महला पंजवा, हमारे कै हरी हरी आन अवर, सियाण ना करी रहा। वड्डे भाग गुर अपना पायो, गुरमुख हर नाम दृढ़ायो। हर हर जाप ताप ब्रत नेमा, हर हर त्याय कुशल सब खेमा। अचार विहार जात हर गुणिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकर पाया, सब किछ तिसके ग्रह में आया। ठोडी महला पंजवा, घर चौथा धूप देखो अंकार। सतगुर प्रसाद रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर निहो ना होए रहा। हों टोंडेंदी दर्शन कारण, बीथी बीथी पेखा। गुर मिल भरम गवाया हे, एह बुद्ध पाई मैं साधु कनो। लेख लिखियो तुर माथे, ए बिद नान कर नैणिया लोए। टोडी महला पंजवा, गर्भ गहलड़ो मुरड़ो ही हो रे। ही ओ महाराज दी मायो, टीहड़ न्याई मोय फाके ओरे रहा। कणो कणो कणो सद लोड़े, बिन लहने कैठे पायो रे। महाराज को गाथ वाहु स्योले, पुलड़ियो नह पागड़ो बाहे संजायो रे। सुन मन सीख साधु जन, सगलो थारे सगले प्राशित मिटियो रे। जा को लहनो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गुरवासना पड़ियो रे। टोडी महला पंजवा, घर पंजवा धूप देखो अंकार। सतगुर प्रसाद

अंतरजामी सुगड़ सुजान कोटराज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट धारो प्रभ मान आठ पैर रसना गुण गावे जस पूर अकावे सम्राथ कान तेरी सरना दियन के दाते सदा सदा नानक कुर्बान टोडी महला पंजवां।

मद ठीठे अस्त्र भय साच रंग राती जन्म मरण बौर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहू न चले सब मूठे ढोडी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर भलो हमारा राउ गुरपूरा भेटियो बडभागी जा को अंत न पारा वारा कर गय काढ लियो जने अपना बिख सागर संसार जन्म मरण काटे गुर बचनी बोड़ ना संकट द्वारा नानक शरण गई प्रभ स्वामी पुनः पुनः नमस्कार ठोडी महला पंजवा माई मेरे मन को सुख कोटि आनंद राज सुख भुगवै अर सिमरत बिन से सब दुख राव कोट जन्म के किल विख नासे सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण पईया सा दर्शन पेट ते उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख नानक शरण गई सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना धोख ढोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उर तारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाउ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत विचारे गुण गावती अतुल सुख पाया ठाकर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीमा हर नानक कंठ मजारे ढोडी महला नावा एक ओंकार सत गुर प्रसाद कहो कहा अपनी अदमाई उर्जियो कनक कामनी के रस न कीर्त प्रभ गाई राव जग झूठे को साच जान कै ता स्यों रुचि उपजाई दीन बंद सिमरियो नहीं कबहू हो जो संग सहाई भगन रहो माया मैं निस देना छुटी ना मन की काई कहे नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की शरणाई ढोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूरा जल की मछली चरे खजूरा काए रे बक बदलायो जिन हर पायो तिने छुपायो राव पंडित होए कै वेद बखाने मूर्ख नाम देव रामे जाने

एकादशी व्रत करे काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम दियो सुकृत सुमत पै गुरमत राम कहे को ना बैकुंठ गए। थीन छंद है।

खर दर्शन गावे राम शंकर कोड़ तितिस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जीत उपाम नानक कृपा कृपा करी हर जिनको ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान दिवायो रहाऊ।

अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वतर रमनं, नानक अगनासन जगदीश्वर है। पेखण सुनन सुनामन मन में दृढ़ी है साच, पूर रहो सर्वतर में नानक हर रंग राच। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है, सब अंतर सोई करण कारण समर्थ प्रभ, जो करे सो होई। खिन मैं थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझ सी,

कथना कथी ना वै तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लैंदे थग पाहे जुगा जुगंतर खाही खाए हुक्मी हुक्म चलाए राहो नान बिगसे वे परवाहो साचा साहिब साज नाए पाख्या पौ अपार आख मंगहे देहे देहे दात करे दातार फेर के अगे रखी है जे दिसे दरबार होंके बोलन बोली है जिसु तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड़ियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ए वै जानी है साब आपे सचियार थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आवन रंजन सोए जिनसे व्यतन पाया मान नान गावीए गुणी निदान गावीए सुनिए मान रखिए पाओ दुख पर हर सो कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई गोरीसर गुर गोरख बरमा गुर पार्वती माई जेहो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जिस पावा विन पाने के नाए करी जेती सिरठ पाई वेखा विन कर्मा के मिले लई मातवे रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सवना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा

मन की गात कही ना जाए, जे को कह पिछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। मन्ने मुँह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पास्यों प्रगट जाए। मन्ने माग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।

जेको मन जाने मन कोए। पंज प्रवान पंज प्रधान पंचे पाव है दरगह मान पंचे सोहे दार राजान पंचा का गुरेक ध्यान। जेको कह कर विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख था रख्या जिन सूत।

एक माई जुगत व्याई ते चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जे सुभाव है।

साहिब जी लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे निमुख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल हो वाहेगुरु साहिब जी सतनाम श्री

सज्जन सच्चा पातशाहो सिरसा हांदसाहो जिस पास बैठो सोही सब नो वाहिगुरु साहिब जी।

हृदय उर तहारे सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारे हर हर चरण हृदय उर तहारे सिमर स्वामी सतगुरु अपना

संगोचरहि प्रथम भैरवे बिलावले पुण्या की गावे बंगले पुण्य सुले की पै भारी पैरों की पांचो नारी पंचम हरख।

पात्र द्वितीया माल कौशकियालापै संग रागनी पांचो तापै कौन करी अर देव गंधारी गंधारी से हृदय चारी

रख दियो, सिर ते रख दियो। बोले सो निहाल श्री अकाल। सो महाराज इस बच्चे नूं जुम्मे नवाउण दी समर्था बख्शण। यह अरदास है साडी, बच्चे दे सिर ते जुम्मेवारियां पै गईयां। असी बच्चे नूं बेनती करदे हां कि काका जी तुसी अपने माता जी दे जो भैन जी दे उसका पूरा ध्यान रखना, उस दे सारी गल सुन के जो बाकी परिवारां दे नाल कार बिहारां दे विच तुसी अपने पिता जी दियां फिर जिम्मेवारियां निभाउणियां। सो महाराज अगे अरदास है इस बच्चे नूं जिम्मेवारियां निभाउण दी समर्था बख्शे। अते मैं फिर एक बार अकाल पुरख दे चरणां विच अरदास करदा कि महाराज वो बिछड़ी हुई पवित्र रूह नूं सदीव काल वास्ते अपने चरणां विच निवास बख्शना, पिछे परिवार नूं, रिश्तेदारां नूं, साख संबंधियां नूं, सभनां नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शना। बोलदिआं मेरे तों कोई गलती हो गई मैं खेमा दे जाचकां। अखीर विच मैं बेनती करदा भुल्लर परिवार वल्लों, बाजवा परिवार वल्लों, गिल परिवार वल्लों आई हुई संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद। अते जो परिवार वल्लों उस बिछड़ी हुई पवित्र रूह की याद विच लंगर पानी बड़ी श्रद्धा भावना नाल तैयार किए हुए ने, जिन्हां ने छक लिया उन्हां दा धन्नवाद, जिन्हां ने हजे छकना वो छक के जाण दी कृपालता करनी। ये मैं अखीर विच बेनती करदा किसी ने भी परिवार वल्लों आ के कोई शब्द बोलने होण जरूर बोल सकदे आ। उत्थे भी मैं जो साडी भैण अपने नवकरण कौर टोरंटो तो जो भुल्लर साहब की भूआ जी की लड़की आई सी उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सुचजे ढंग नाल बड़े चंद शब्द उन्होंने बोले अते बड़े सोहने तरीके दे नाल उत्थे स्टेज नूं हैंडल किया, मैं उसका भी धन्यवाद करदा। तो हुण जे किसी ने नहीं कोई चार शब्द बोलने तो इत्थे ही समाप्ति है। अखीर विच बाणी दा फरमान है संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़ियां ज्यो होए साहब सो मेल। इन्हां ही शब्दां दे नाल भुल चुक दी खिमा वाहिगुरू।

भूदान करन करा मनहार स्वामी सगल कटाके अंतर जामे अपने गतमित जानो आपे अपन संग आ प्रभ राते तुमरे उस्तत तुम ते हुए नानक अवर न जान सकोए सर्ब धर्म मैं शिष्ट धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल किरिया मैं उत्तम किरिया सा संग दुरमत मल हिरिया सगल उद्यम मैं उद्यम पला हर का नाम जपू जी सदा सगल बाणी मैं अमृत बाणी हर को जसों रसन बखाणी

मिथ्या तन धन कटंब संभाया, मिथ्या हम में ममता माया, मिथ्या राज्य बंटन मालिक, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथस्ति अस वस्त्रां, मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता, मिथ्या त्रु मोह अभिमान, मिथ्या अपसु पर कर्त गमान, अस्थिर भक्त साधकी शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण, मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है, मिथ्या नेत्र पीत पर त्रिया रूपादि, मिथ्या रसना भोजनान स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावै, मिथ्या मन पर लोभ लभावै, मिथ्या तने पर उपकारा, मिथ्या बासलीत बेकारा, बिन बुजय मिथ्या सपै सफल देहि, नानके हरे हरे नामले, बिरथि सागत की आरजं, सच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन आंदी, मुखे आवता कै दरगंद, बिन सिमर दिन रैन बिरथा बहाई, मेघ बिना ज्यों खेती जाई, गोद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के नरार्थ दाम, तन तन ते जन जय कट बस्यो हर नाहो, नानक तां कै बल बल जाऊं, रहत अवर कशे अवर कमावत।

आप जपे जप सोए, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते हो प्रगास, प्रभ दया ते कमल बिगास। प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्म निदान प्रभ तेरी मया, आप कछु न किन्हू लया। जिजित लाभ तित लगे है हर नाथ, नानकिन कै कछु न हाथ। सलोके अगम गाद पर ब्रह्म सोई, जो जो कहे सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साजना की चर्ज कथा अष्टपदी। साध के संगी मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटाया अभिमान, साध के संग प्रगटे सुगयान। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की मैं मां बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महे समाणी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा पर फूले। साध के संग आवी बस पंचा, साध संग अमृत रस पूंचा। साध संग हुई सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन। साध के संग ना कतहु तावी, साध संग स्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सुपरसन। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापनीत। साध संग के सिओ नहीं बैरी, साध के संग ना बीगा पैर। साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तजे सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आए। साध के संग ना कबहू तावे, साध के संग ना सदा सुख पावे। साध संग बसता गोचर लहे, साध के संग अजर सहे। साध के संग बसे थन ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै करबाण। साध के संग सब कुल उदारी, साध संग साजन मीत कटंब निस्तारे। साधु के संग सो तन पावे, जिस तन को सब को बरसावे। साध संग धर्म राय करी सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथन गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं किस काली, दर्शन पेट तहूत निहाल। साध के संग कलूकत हरे, साध के संग नरक पर हरे। साध के संग आउआ सहेला, साध संग बिसरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साधरित बसाए, सा नानक उदरे सासो रसे। साध के संग सुन्यो हर नाओ, साध के संग हर के गुण गाओ। साध के संग ना मन ते बिसराए, साध संग सर पर नस्तर। साध के संग लागे परम मीठा, साधु के संग कट कट डीठा। साध संग पे आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संयोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। साध की उपमा तै गुण ते दूरी, साध की उपमा रही परपूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूचे। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। सलोके मन साचा मुख साचा सोई, अवर न पेखे एक बिन कोई। नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोख, जैसे सूर सर्व को सोख।

ज्ञानी सुफल फलां। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उतारी, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंगी, ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम पधारी, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागती, ब्रह्म ज्ञानी अबंध त्यागते। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज।

हैं। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाती, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ है।

जय पर ब्रह्म का रंग जैसी मादी तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल सलोक उस्तत करे अनेक जाने अंत न पारा वारी नानक रचना प्रभ रची बहुविधानक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट अचार बिहारी कई कोट पय तीर्थवासी कई कोट मन भरमा उदासी कई कोट वेद के सरोते कई कोट तपीशर होते

कोटन दगे आने कई कोट किरपन कठोरे कई कोट पिगा तम ने कोरे कई कोट पर दर्ब को हिर है कई कोट पर दुख ना कर है कई कोट माया शर्माहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सित जति जोगी कई कोट राजे रस पोगी कई कोट पंखी सर्प उपाई कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पौन पानी बसंतरे कई कोट देश पुमंडल कई कोट ससियारे सूर नखत्तर कई कोट देव दानव इंद्र सिर सतर सगल समग्री अपने सूत्र तारे नानक जि जिस पावे तिस तिस नस्तारे कई कोट राजे तम साकते कई कोट वेद प्राण सिमरतार शास्त्र कई कोट किए रतन समांदे कई कोट नाना प्रकार जानते कई कोट किए चिर जीवै कई कोट गिर मेरे स्वर्ण थीवै कई कोट जा किन्नर पसांज कई कोट भूत प्रेत सुकर मिरगांज सब ते नेरे सबूते दूरे नानका पलपत रहा परपूरे कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवै मर है कई कोट बहु जोनी फिर कई कोट बैठते ही खाही कई कोट काले।

संपरगास कई कोट तत के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर पे सद सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सहज समावे अपने जन को सा सास समारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे सलोक करन कारण प्रभ एक है दूसर नाई कोई नानक तिस बलहार नै जल थले महियल सोए अष्टपदी।

ब्राह्मण सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावै सोई फणथियो कबहू ऊच नीच मैं बसै कबू सो खर खरंग हसै कबहू निंद चिंद ब्योहारी कबहू उब आकाश प्याल।

सो सेवकों किस तै डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य मैं आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजया, गुर प्रसाद तत् सब बूझया, जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुखम सोई अस्तूल, ना किस जन्म ना किस मर, आपन चलते आप ही कर, आमन जामन दृष्ट अनदृष्टि, आज्ञाकारी तारी सब सिष्टि, आपे आप सगल मैं आप, अनक जुगत राज थाप उथाप, अबनासी नाही किस खांडे, तारन तारे हो ब्रह्मांडे, अलख आपे पुरख परताप, आप जपाई तन नानक जाप, जिन प्रभ जाता सुसोभावंत, सगल संसार उदरे तन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारन, प्रभ के सेवक दुख बसारन, आपे मिल ले कृपाल, गुर का सब जप पे निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनों कृपा करे वड पागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान, जो किश करे सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग, सह सुबह होवे सो होए, करने हार पछाने सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख नदान उन्हों बन आए, आप सको आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान सलोक, सर्व कला परपूर प्रभ, बिरथा जान नहारे, जा कै सिमरन उदरिया, नानक तिस बलहार अष्टपदे, टूटी गंड नहार गपाल, सर्व जी आपे पितपाल, सल के चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, आपन की आकशु ना होए, जे सो प्राणी लोचे कोए, तिस बनाए तेरे किस काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की ज्योत सगल कट सोहे, तनवंता होए क्या को गर्भ, जहां सब किस तिस का

पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ जप जप जीवा नानक हर नाऊ नाम के तारी सगले जनते नाम के तारी खंड ब्रह्मांड नाम के तारी सिमरत वेद पुराण नाम के तारी सुनन ज्ञान त्यान नाम के तारी अगास पताल नाम के तारी सगलाकार नाम के तारी पूरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद मैं सूजन गत पाए रूप सत जांका सत स्थान पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत सत जांकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत्य कर्म जांके रचना सत मूल सत सत उत्पाते सत करनी निर्मल निर्मले जिसे बजाए तिसे सब पली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत जन जा कै हृदय प्रवेश सत निरत बुझे जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत की आ सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसके श्रेष्ठ सुकरन हारे अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओ दाते दुख काटन हारे जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड पागे जन कै संग एक लिव लागे गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोके आदि सच जुगाद सच है पे सच नानक होसे पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सब तारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सूरत सत सत जा सुनता बूजन हर को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप दे जिन मान्या करन करम तिन मूल पछान्या जा के हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निरपउ हुए बसाना जेते उपजया तिस माहे समाना बस्त मायला बस्त गडाई तां को पिन न कहना जाई बूझे बूजन हार बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक मन प्रतीत ठाकुर के सेवक निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नानक सो सेवक सा सा सुमारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेव की सर पर राखे अपने दास को दे बड़ाई अपने सेव को नाम जपाई अपने सेव के आप तराके ताकि गदमत कोई ना लाके प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभ अपने सेवा लाया नानक सो सेवक दादिस प्रगटाया नीकी कीरी मैं कल राखे पसम करे लश्कर कुट लाखे जिसका सास न काटते आप ताको रख दे कर हाथ मान जतन करत बहु पाते तिसके करत बिरथे जात मारे न राखे अवर न कोई सर्व जिया कर राखा सोई काहे सोच करे रे प्राणी जब नानक प्रभ अलख बडाणी बारंबार बार प्रभ जपिया पी अमृते मन तन तरपिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसकी सबर नहीं दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंगे नामो सुखर नाम का संग नाम रह जो जन तृप्ताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कह सदकाम बोलो जाचे बा दिन रात प्रभ अपने जन कीनी दात करे भगता तम कह चाये प्रभ अपने सो रह समाये जो होवा होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पिछाने तिसकी महिमा कौन बखाने तिसका गुण का एक न जाने
आठ पैर प्रभ पेखो, आठ पैर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से जन पूरे। मन मेरे तिन की उठले हो, मन तने अपना तिन जन दे हो। जिन जन अपना प्रभु पिछाता, सो जन सर्ब थोक का दाता। तिसके शरण सर्ब सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे। अवर से आनब सग

ना जापत, तब हरख सो कहूं किसे व्याप्त। जब आपने आप पर ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम। आपन खेल आवरती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होत प्रभ केवल तनि, तब बंद मुक्त कहूं किस को गणी। जब एक के हर अगमा पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहूं कित ठाए। जब आपे आप अपनी जोत तरें, तब कवन निडर कवन कत डरें। आपन चल तप करने हार, नानक ठाकर अगमा पार। अविनाशी सुखे अपने आसन, तह जन्म मरण कहूं कहां विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोई, तब जम की त्रास कहूं किश होए। जब अभिगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किश पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। आपन आप ही चर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जा निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहूं क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कोमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छदर लगत कहूं केश। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तै किसे पूख कवन तृप्तावे। करन करावन करने हारे, नानक करते का नहीं समार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाए, तब कौन माई बाप मित्र सुत पाए। जय सर्व कला पे परवीन, तै वेद कतेब कहां कोचीन। जब अपने आप उर तारे, तो सगन अप सगन कहां बिचारे। जय अपने ऊच अपने आपे नेरा, तै कौन ठाकर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्मर हे बिस्माद, नानके अपनी गत जानो आप। जय अचल अछेद अपेद समाया, ऊहा किसे व्याप्त माया। आपस को आपे आदेश, तै गुण का नाही परवेश। जय एक है एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपने आप त्यारा, तै कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा। जय प्रचियो पर पंचाकार, तै गुण मैं कीनो विस्तार। पाप पुण तै पई कहावते, कऊ नरक कऊ सर्ग बसावत। आल जंजाल माया जंजाल, होमे मोह परम पैपार। दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर देखा, खेल सकोचे तो नानक एक। जा विगते पगता आप, जा पसरा पसार संत प्रताप। दुहु पाका आपे तनी, उनकी शोभा उन्हों बने। आपे कौत करे नंद चोज, आपे रस पोगन नरजोग। जिस पावे तिसे अपन ना लावे, जिस पावे तिस खेल खलावे। बेसमारा थागनता तोले, ज्यो बुलावो तो नानक दास बोला। सलोक जे जंत के ठाकरा, आपे वर्तन हारे। नानके को पसरिया, दूजा कै दृष्टारी अष्टपदी। आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। जां तिस पावे तां सिष्ट उपाय, अपने पाने लय समाए। तुम ते पिंड नहीं किस हुए, आपन सुत सब जगत परोए। जां को प्रभ जीओ आप बजाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत्का बेता, नानक सगल सृष्टि का जेता। जे जंतर सब ता कह हाथे, दीन दयाला नाथ को नाथ। जिस राखे तिस कोए न मारे, सो मुआ जिस मनो बसारे। ते तजे अवरे कहां को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जे के जुग जाके सब हाथे, अंतर बाहर जानो साथ। गुण दान बेअंता पार, नानक दास सदा बलहार। पूरन पूर हे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने करतब जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाले जियन बहु पाते, जो जो रच सुत से त्यात। जिस पावे तिस लय मलाए, भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक एक जान्या। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवको सेवा बन आए, हुकम बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाका मन
बसया निरंकार बंधन तोड़ पे निर्वारे आंधन पूजे गुर के पैर ए लोग सुखिए पर लोग सहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सवाओ आठ पैर प्रपी खूनेरा मिटिया ज्ञान बिनस है अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दुए लिहो सवारे राम नाम अंतरे उतारे पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परिखिया मन तन नाम जपो लिबलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगा निबहे खी पतमारी एका टेक रखो मन माए नानक बहुर न ना आवी जाए तिस्ते दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार ते आए निरपौ जपे सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छूटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुखे नाम जपते मन होवत सुख चिंता जाए मिटै हंकार ते जन को कोई न पहुंचन हार सिरे उपर थाडा गुर सूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन प्रेत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसे सुहोत निहाले ताके निकट न आवत काले अमर पे अमरा पद पाया साध संग नानक हर

लाए कौन निकटे कौन कहिया दूरे आपे आप पर पूरे अंतर गज से आप जनाए नानक ते जन आप बजाए सर्ब पूते आप वरतारा सर्ब नाने आपे खनहारा सगल समगरी जाका तना आपन जस आप ही सुना आवन जाने एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सब के मध्य अलपतो रहे जो किछ कहना सो आपे कहे आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे तां ले समाए इस्ते हुए सुना ही बुरा उरे कहो किने किस करा।

ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होय ता सोजी पाए। तिसका किया सब परवाने, गुर प्रसाद नानके जान। जो जाने ते सदा सुख हुए, आप मिलाए ले प्रभ सोए। ओ तनवंते कलवंते पतवंते, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंते। तन तन तन जन आया, जिस गुर प्रसाद सब जगत तराया। जन आमन का यह स्वाओ, जन कह संग चित आवे नाउ। आप मुक्ति मुक्त करे संसार, नानक ते जन को।

अष्टपदी पूरे गुर का सुनापदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतराय चेंदे आस अनंत त्यागो तरंग संत जना की तूड़ मन मांगे आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरह हर तन के पर लिहो भंडारे नानक गुर पूरा नमस्कारे खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित बहु नारायण एक एक रूप जां कै रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साधके बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत आधारे आप तरे लोके निस्तारे सफल जिन सफलता का संग जा कै मन लगा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महांत के माथे नानक उदरे तिन कै साथी सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सब रैन अमृत नाम साध संग लैन सुपरसन पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बेकार ते राते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दे आ प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुख मणि सह जग बिंद गुण नाम जिस मन बसा सोहोत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रदान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊचे पाए स्थान बहुर ना होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सांत रिद नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्वता सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान शिष्ट उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन के मुख बने गुरु नानक के नाम बचन मन सुने एहो निदान जपे मन कोई सब जुग मैं ता की गत हुई गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोद भगत कह मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जमते छूटे जाके मस्त करम प्रभ पाई साध सरन नानक ते आई।